ओ अब्दाली तो लिए सिंगो बदला कल्लू कारेदा ओ अब्दाली तो लिए सिंगो बदला।

है अब कछ मर्म जनाया, अनेक कटक जैसे फूल परी, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी,

कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, दीदा दिले दे थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे प्रवाहु, साचा साहिब साच नाई। भाख्या भाऊ अपार, आख है मंगे है देह देह, दाद करे दातार। फिर के अगे रखिए जित दसै दरबार, मोहो के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार।

तिथै काढ़त कढ़िए बहुत अनूप, ताकि अगला कथिया ना जाहि। जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कढ़िए सुरत मत मन बुद्ध।

वर्णत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तंगा काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंगा रूपे नमस्तंगा अनूपे नमस्तंगा भीखे नमस्तंगा लेखे नमस्तंगा काये नमस्तंगा जाय नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा नामे नमस्तंगा ठामे नमस्तंगा कर्मंग नमस्तंगा धर्मंग नमस्तंगा नामंग नमस्तंगा धामंग नमस्तंगा जीते नमस्तंगा पीते नमस्तंगा बाहे नमस्तंगा टाहे नमस्तंगा नीले नमस्तंगा नादे नमस्तंगा शेदे नमस्तंगा गादे नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा उदारे नमस्तंगा पारे नमस्तंग सोए कै नमस्तंगा निकै नमस्तंगा पूते नमस्तंगा जूपे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग नरपरमे नमस्तंग नरदेशे नमस्तंग नरपिसे नमस्तंग नरनामे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरताहते नमस्तंग नरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंगा पूते नमस्तंगा लोके नमस्तंगा सोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंगा थापे नमस्तंग तरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंगा गाहे नमस्तंगा बाहे नमस्तंग त्रबर्गे नमस्तंगा सर्गे नमस्तंग परपुगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंगा रंगे नमस्तंगा पंगे नमस्तंगा गम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंगा जाते नमस्तंगा पाते नमस्तंगा मजबे नमस्तस्त अजबे अधेसंगा देशे नमस्तंगा पीसे नमस्तंग नृतामे नमस्तंग नर्भामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वपूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तंगा पीवै नमस्तंगा जनमे नमस्तंग सोबनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्तद्याले नमस्तंगा वर्णे नमस्तंगा वर्णे नमस्तंग अवर्णे नमस्तंगा मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कर्तारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरबाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपुखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वे प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है लेख है अपेख है अनाम है अकाम है अधे है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निधान है त्रवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है तंद है अबंद है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है।

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बेपूते कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भिखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालंग सदा सर्वदा सद्दाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपिसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरुष अपार सर्व मांत्र मान देव पेव आदिवधार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुख उदार मूरत जोन आद्य सेख देश और न पीस जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दशा विसा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तता हे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जान ही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही केह जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिरे चतर चक मानई पुरतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विस्वरचयो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अररेख परम वेद प्राण जाक है नेत भाखत नित कूट सिमृत प्राण शास्त्र न आव ही बहु चित मद पहार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपहंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंड

बंद है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, नचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिख है, अलेख है, अपीख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनी मुलखराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपीख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है।

मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तृत धर तुरास आजान बाहु एकै सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारन है सर्व उबारन है त्रित के तरन है जग के करन है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विशुंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है जपा जाप है थपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विशुंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अर्घ

शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी शांत अजय अल अपह अभय अपहु अजु अनास अकाश अगंज अपहंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजुल नामे समस्तल निवासी नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुलक निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करी मुल रहीमे चत्र

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु

अकाल मूर्त जुने से भंगुर प्रसाद आसा महला पहला बार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे असराजे की धुनी

विस्मात संयोग विस्मात देवी जोग विस्मात पुख विस्मात भोग विस्मात सिप्त विस्मात साला विस्मात उजड़ विस्मात।

इकृत कृत वा जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझता है सतयुग रसंतों का तरम गैरथवा है।

सर्वाहकृते एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनपहु प्रकाश अमितो जिकह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय त्रिभवन महेप सुर नर असुर नित नित बन तृण कहत

बरनत समत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत समत इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर

निमित्त ही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वडभागे हो गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार दियां हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के लाहे प्राप्त कर रहे हो अति धनवादी हां अति सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी हेड ग्रंथी गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पातशाही नौवीं पटियाला जो आप जी नू लड़ीवार पावन गुरबाणी दी कथा विचार द्वारा शिरशार कर रहे सन रहिंदी 31 मई तक आप जिया ने वध चढ़ के इसे ही तरह दोनों समय सवेर अते शाम गुरबाणी गुर इतिहास गुर सिद्धांत सतगुरु जी दे प्यार दे बचन सरवण करके सत्कार योग ज्ञानी जी पासो लाहे प्राप्त करने आओ अगले समय वास्ते बेनती करा भाई विक्रमजीत सिंह जी गुरदासपुर वाले आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे होईआं भुल्लां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सिंध करो लड़ाई।
1: हुण जदों सरदार सुखा सिंह ने आख्या आओ मर्दां वांग लड़ीए, लखपत राय दी फौज दे नाल आमो सामने होके इस जंग दा निर्णा करिए, इस तरह नाल भुख दे सताए हुए जां पहाड़ ते चढ़के बेदोशे जां पानी विच गिर के मरन नालों दुश्मन दे गल पै के मरना शहीद होना चंगा है। की प्रतिक्रम होया बाकी खालसे दा, रहिंदियां विचारां अगले दीवान विच। हुण दो तीन दिन ते असीं इत्थे नहीं रहांगे, जो बनिया होया गुरुद्वारा साहब वल्लों प्रोग्राम रजाइना जाणा, ते सोमवार दे दीवान विच आपां इस लड़ी नूं अगे तोरन दा यतन करांगे। भुल्लां दी खिमा, आप जी बड़ी मुहब्बत बख्शिश करदे हो, एडी तेज़ जिंदगी विचों वी अपने शाना मते इतिहास नूं सुणन वास्ते जुड़ बैठदे हो, केवल जुड़ बैठदे नहीं प्यार नाल सुणदे हो, इतिहास का सन्मान करदे हो, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु तुहानूं चढ़दी कला बख्शिश करे ते हाजिर हो गए ने मेरी कौम के महान कीर्तनीए सतखंड दरबार श्री हरिमंदर साहब के हजूरी कीर्तनीए भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी अपने जत्थे समेत। मैं उन्होंने जीवया कहिंदा हाँ, बहुत रस भिन्ना कीर्तन करते ने, अमृतमई बाणी ते सुरीले कंठ नाल जदों कीर्तन करते ने मन कुदरती तौर पर रब्बी रंग में रंगया जाता है। जीव आया भुल्लां दी खिमा फतेह प्रवान करो, सत्कार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया, शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जिने वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी।